0: नहीं मैं तो अकेली हूँ। ये देखिए मेरा टिकट।
1: Strange, but I'm sorry, 125 has taken off.